भगवान की जय। सिद्धेव पुरुष महादेव की जय। स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री अलक पुरुष महादेव की जय।

0: बोली श्रीदीप नरयम भगवान की जय। श्री श्रीदेव पुरी जी महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परहंस स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की जय।
1: गुरुदेवा की जय। श्री मीराबाई जी की जय।

Prabhu, would you accept my food? He said, yes. तुम कौन हो कि मैं छोटा मजदूर हूं, रेस्टोरेंट है. अच्छा प्रभु, हम आपके लिए कुछ प्रसाद भोजन लाए, खाइए. खिलाओ बेटा, खा लिया. वाइल ईटिंग हिज बुद्धि चेंज्ड. नाउ इफ यू ड्रिंक स्लोली स्लोली ग्लास मिल्क, यू बिकम नाइस हैप्पी एंड रिलैक्स्ड. बट यू ड्रिंक स्लोली स्लोली वोडका और विस्की, आफ्टर हाफ ग्लास यू फील ही द बीज इनसाइड. नाउ द महाराज इज थिंकिंग, बाबा जी आज तो कहीं गांव में जाना चाहिए, जंगल में बैठे बैठे परेशान हो गए. अरे जंगल में बैठे बैठे परेशान हो गए, अब तो कहीं गांव में जाना चाहिए, भक्तों को दर्शन कर देना चाहिए. बोरिंग सिटिंग अंडर द ट्री सो मेनी इयर्स, नाउ आई शुड गो टू सम विलेज एंड गिव सत्संग. केम देयर वॉज ए ब्यूटिफुल स्मॉल शिवा टेम्पल नियर द विलेज, वेरी नियर, क्लोज. He asked the Pandit Pujari if there is a room. They said, yes, there is one room for sadhus to stay. He stayed there. Evening prayer, and he came to prayer. There was a beautiful Shiva statue, not only Shiva Lingam, made out of gold. Now the food of the Pandit is working in his blood. They were making prayer and he was hypnotized by statue of gold. Gold. Many years he didn't see any gold. Now he decided to steal the Shiva statue. How to take away? Trick. All people went to sleep and 2 o'clock he woke up, went to Shiva's temple, and statue was very strong, tied, fixed by good worker, a good engineer like Yogesh, you know. You can't move. So Babaji took this statue like this and he was doing half hour like this.

heart, I made temple for you. Moving. Come on, Lord. Move up, move up. Statue came out, sweating, tired, blue spots. Took it and went away. Hari Om. Baba ji gaav ke andar aaye. देखा कि शंकर का मंदिर, जब पुजारी को कहा कि रहने के लिए जगह है, कि ये कमरा है साधुओं के लिए, वहां रुक गया। श्याम को आरती में आए, भगवान शिव की बहुत सुंदर एक मूर्ति थी सोने की, करीब 5 किलो की। आरती हो रही थी, सोना चमक रहा है। बाबा जी तो देख करके पागल हो गए कि जिंदगी में इतना सोना कभी देखा ही नहीं, कितना जल्दी इसको लेके चला जाऊं, पार करें। रात के 2 बजे बाबा जी उठ करके मंदिर का दरवाजा का ताला तोड़ करके अंदर गए और मूर्ति को पकड़ के, बहुत मजबूत काम था योगेश जी की तरह, लेकिन बड़ी मुश्किल से मूर्ति को जैसे तैसे निकाला और 3 बजे लेके बग गया। 2:30 बजे पुजारी पूजा कर, 3:30 बजे पूजा करने को आया, देखा कि मूर्ति है ही नहीं। घंटी बजाई जोर जोर जोर से, तो गांव के लोग दौड़ करके आए। 3:30

the Pandit ji came for puja. Temple door was open. Shivji was not there on the altar. He rang the bell long. And the village people were running, coming, what happened? Strong people like Jasaraji and Premananji, and they were running. Came, what happened, Panditji? Statue is stolen. Do you know anybody? Came, I don't know any. If I stay anybody here, came, one sadhu is staying in the room. They went there, there is no sadhu. They took the torch light, they saw the steps running. That time was no concrete, Sisi road, you know. There was only sand road. Sandy road, so young people were running, and Babaji had a Shiva statue and running. सभी गांव के लोग आए, देखा कि शिव जी की मूर्ति चुरा गई. पंडित बोला कि गई का पता नहीं किधर. कोई यहां आए थे क्या? बोला एक महाराज रुके हुए, और कोई नहीं है. जाके देखा कि कमरे में महाराज जी भी नहीं. बैटरी से देखा कि वहां पैरों के चिन्ह मंडे हुए. उस समय ये सीसी रोड, डामर की रोड होती नहीं थी. किधर भगा, देखा उनके पैरों के चिन्ह, तो बहुत से लोग उधर, जवान लोग दौड़े. जाते जाते 4 बज रहे थे और प्रभात हो गया, भोर हो गया. क्या नहीं? उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है. जो सोवत है वो खोवत है. गाते हो कि नहीं?

पाव। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब कहा जो सोवत है। प्रकाश होने लगा, उषा काल, ब्रह्म मुहूर्ता, बाबा जी जा रहे हैं, आधा किलोमीटर दूर दिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो लोग भी दौड़ रहे हैं, बाबा जी भी मजबूत है। बाबा जी ने देखा पीछे की फौज आ रही है, अब क्या करें। लेकिन दौड़ने से करने से बाबा जी का वो डाकू का चोर का खाना खाया था ना अन्न, वो पच गया, पसीने से पच करके निकल गया और वापस सद्बुद्धि आ गई। अब बाबा जी सोचे कि कहूंगा कि मैं चोरी करने को आया तब तो रिपेयरिंग हो जाएगी। हाँ, तपस्या थी पूरी। देखा भाग्य सेवा एक तालाब था, पानी की झील, सुंदर निर्मल जल। दौड़ करके गए पानी की झील के अंदर, डुबकी लगाई और मूर्ति को स्नान कराने लगे। वो आए गए डाकू चोर कि बोला चुप रहो, जल्दी आओ, तुम भी लाभ ले लो, स्नान कराओ। रात को शंकर भगवान मेरे पास आए कि कई बरस हो गए मुझे स्नान नहीं कराया, मेरे को तो पानी की झील में नहाना है। हे भगत, तू ही मुझे समझता है, दूसरे गृहस्थी नहीं समझते, आ तू जल्दी कर, स्नान कराओ। दिन उदय होने से पहले पहले जाकर के भगवान को वापस सिंहासन में बिठाना, चलो बेटा जल्दी आओ। सब कहते हे महाराज बहुत अच्छे हैं, गुरुदेव की जय हो। मूर्ति को स्नान करा करके लेके आके रखा और आरती बोली, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश, बच गया, बुद्धि वापस आ गई। तो व्हाट हैपन, ही टुक द एंड रन अवे द यंग पीपल फ्रॉम द विलेज, दे वर रनिंग बिहाइंड। Dawn came.

प्रेम का प्याला प्रभु कब मेरा। गुरुजी सेड देयर इज अ नेवर एंड फ्रॉम दिस डिवाइन नेक्टर डिवाइन लाइट एंड इज सो स्ट्रांग। सो आई सेड गुरुजी कैन आई गिव यू वन सजेशन। गुरुजी सेड यस। आई सेड देन डोंट इमेजिन महाप्रभुजी हियर इन आज्ञा चक्र बिकॉज यू गिव टू मच टेंशन हियर। गो इन द हार्ट एंड हैव हिम इन द हार्ट। ओके व्हाट गुरुजी सेड। ओके नेक्स्ट डे व्हेन आई केम गुरुजी सेड महेश यू कन्फ्यूज्ड एवरीथिंग। I said, what? I transport the Mahaprabhuji from Agya Chakra to Anaha Chakra. Now, this settlement from transport from Jadan to Khatu is not so easy, you know. You have to make many things. So today, I was nearly confused. I mean, Agya Chakra or Anaha Chakra or Agya Chakras? But I asked him, have you the headache? He said, no headache, but confusion. Better I should have a headache than such a feelings. So, but after some time, Guruji said to some people, Mahesh have transferred the Mahaprabhuji from Agya Chakra to Anahad, from Agya Loka to Anahad Loka. But he said he have still his sabi. Then what he said, he held the lotus feet of Mahaprabhuji in the heart and his divine light in his Agya Chakra. Very different seva, different things. Then Guruji said when he was doing the Mansik Puja, how from the beginning, early morning when Mahaprabhuji got up and all sevas what Guruji did, he was doing exactly the whole seva, 1 hour. Well, meditation. We need to purify our panchkosha. And this is a anamaya kosha, only what I am telling you. Jaisa khayega ann, vaisa rahega man. Agar koi papi ka ek bhi dana aa gaya, तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसीलिए कहा कि भोजन करने से पहले भगवान को भोग दिया जाता है। मेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण करते क्या लगता है मेरा। हे प्रभु, हमें महाप्रसादी ही दीजिए, ब्रह्मार्पणम। हम अर्पण करते हैं, त्याग करते हैं, भगवान का दिया हुआ भगवान को चढ़ाते हैं, फिर बाद में जो होता है हम लेते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसी वृत्ति है या ऐसी कोई ऐसे प्राण उसके अंदर हो, उस अनाज के अंदर, तो वो निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। एक बार गुरुजी ने कहा कि महेश, मेरे सिर दर्द हो जाता, अभी पता नहीं ध्यान करता तो 3-4 बार गुरुजी फरमाए बोला। तो मैंने कहा कैसे करते आप ध्यान? तो गुरुजी ने कहा कि यहां बाप महाप्रभु जी की सभी विराज रहे हैं और मैं मेरे महाप्रभु जी के दाहिने पैर के अंगूठे के अंदर जो प्रकाश अमृत निकलता है उसका पान करता हूं और उसी के आधार पर मैंने भजन भी लिखा। महाप्रभु जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि वो इतना आनंद है कि उसका कोई पार ही नहीं है। तो वो कब पूर्ण होगा, वो कब भरेगा? तो बाप जी ने वो भजन लिखा कि प्रेम का प्याला हरि कब मेरा भर से, ये मेरा प्रेम रूपी प्याला जो है प्रभु कब पूर्ण हो जाएगा, कब भर जाएगा? तो मैंने कहा महाप्रभु जी को यहां से अब हृदय चक्र में ध्यान कराओ आप।
दूसरे दिन आया तो बाबू जी कहते मेरे तो है तो गड़बड़ कर दी मैं, क्यों कि महाप्रभु जी का ट्रांसफर कर दिया अनाहत से आज्ञा से अनाहत, और सब मेरी वृत्तियों का ध्यान का वो, मैंने कहा हो तो वापस वैसे ही करें आप। बोला नहीं नहीं अब ट्राई करूंगा इधर भी। तो ध्यान की विधि होती है, महापुरुषों को यह अनुभव होता है, गुरु जी को होता था, और हम लोग जो ध्यान करने को बैठते तो क्या होता है, चलो लोग कहते हैं भगवान की पूजा करनी चाहिए, मंत्र बोलते, काम पे तो जाना है ही है, वो इतना आदमी इतना बेकार है, वो पैसा ले गए वापस देने का सोच नहीं रहा है, खैर बच्चों की शादी भी करनी चाहिए। अब ध्यान कर रहे हो कि ये वृत्ति विचार कर रहे हो, इसलिए कहा है कि हमारे महर्षि पातंजलि

अनुशासनम, अनुशासन जीवन जीना पड़ेगा। अनुशासन ही सफलता की सीढ़ी है, अनुशासन ही परिवार को मजबूत, समाज को मजबूत, और अनुशासन ही देश को महान बना सकता है। जहां अनुशासन नहीं रहा वहां सब मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए पूज्य श्री गुरुदेव का ये भजन जब मैं गाता हूं तो बाप जी की वो मनोहर सभी सामने आती है, मुस्कान आती है और कहते हैं कि तुमने महाप्रभु जी का ट्रांसपोर्ट कर दिया। मैंने कहा बाप जी ट्रांसपोर्ट नहीं किया। तो डॉक्टर शांति विल सिंह नाउ दिस भजन, प्रेम का प्याला हरि कब मेरा भरसे। दीप नारायण भगवान की। तो टुडे आई स्पोक अबाउट अन्नमया कोशा, टुमारो लेट्स कम टू द प्राणमय कोशा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांच, दिस आर द फाइव डिफरेंट चैम्बर्स। विद इन दिस फाइव इज दैट जीवात्मा एंड आत्मा दैट हैज टू बी प्यूरिफाइड। देन दिस रेडियंस, द रेजोनेंस, व्हेन दिस इज प्यूरिफाइड देन यू आर बियॉन्ड दिस ऑल मेटेरियल वाइब्रेशंस। From you is only divine radiance is coming, and anyone who comes closer, sits round you, go round the temple, you are in this abhamandal inside. Deep Narayan Bhagwan ki, Deveshwar Mahadev ki, Madhav Krishna Bhagwan ki, Sanatan Dharma ki, alag.

के लिए कुछ प्रसाद भोजन लाए, खाइए कि लाओ बेटा खा लिया। वाइल ईटिंग हिज बुद्धि चेंज्ड। नाउ इफ यू ड्रिंक स्लोली स्लोली ग्लास मिल्क यू बिकम नाइस हैप्पी एंड रिलैक्स्ड, बट यू ड्रिंक स्लोली स्लोली वोडका और विस्की, आफ्टर हाफ ग्लास यू फील ही the bees inside. Now the Maharaj is thinking, Babaji, आज तो कहीं गांव में जाना चाहिए, जंगल में बैठे बैठे परेशान हो गए। अरे जंगल में बैठे बैठे परेशान हो गए, अब तो कहीं गांव में जाना चाहिए, भक्तों को कुछ दर्शन कर देना चाहिए। Boring sitting under the tree so many years, now I should go to some village and give satsang. Came, there was a beautiful small Shiva temple near the village, very near, close. He asked the Pandit Pujari if there's a room. They said, yes, there's one room for sadhus to stay. He stayed there. Evening prayer, and he came to prayer. There was a beautiful Shiva statue, not only Shiva Lingam, made out of gold. Now the food of the bandit is working in his blood. They were making prayer and he was hypnotized by statue of gold. Gold. Many years he didn't see any gold. Now he decided to steal the Shiva statue. How to take away? Trick. All people went to sleep and 2 o'clock he woke up, went to Shiva's temple, and statue was very strong, tied, fixed by good worker, a good engineer like Yogesh, you know. You can't move. So Babaji took this statue like this and he was doing half hour like this. My Lord Shiva, come to me. Come here, my dear Lord Shiva. In my heart, I made temple for you. Moving. Come on, Lord. Move up, move up. Statue came out. Sweating, tired, blue spots. Took it and went away. Hari Om. Babaji gaav ke andar aaye. देखा कि शंकर का मंदिर, पुजारी को कहा कि रहने के लिए जगह है कि ये कमरा है, साधुओं के लिए वहां रुक गया। श्याम को आरती में आए, भगवान शिव की बहुत सुंदर एक मूर्ति थी सोने की, करीब 5 किलो की। आरती हो रही थी, सोना चमक रहा है। बाबा जी तो देख करके पागल हो गए कि जिंदगी में इतना सोना कभी देखा ही नहीं, कितना जल्दी इसको लेके चला जाऊं पार करें। रात के 2 बजे बाबा जी उठ करके मंदिर का दरवाजा का ताला तोड़ करके अंदर गए और मूर्ति को पकड़ के, बहुत मजबूत काम था योगेश जी की तरह, लेकिन बड़ी मुश्किल से मूर्ति को जैसे तैसे निकाला और 3 बजे लेके बग गया। 2:30 बजे पुजारी पूजा कर, 3:30 बजे पूजा करने को आया, देखा कि मूर्ति है ही नहीं। घंटी बजाई जोर जोर जोर से, तो गांव के लोग दौड़ करके आए। 3:30 द पंडित जी केम फॉर पूजा, टेम्पल डोर वॉज ओपन, शिव जी वॉज नॉट देयर ऑन द अल्टार। He rang the bell long
and the village people were running, coming.

0: भाव।
1: उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब कहा जो सोवत है। प्रकाश होने लगा, उषा काल, ब्रह्म मुहूर्ता। बाबा जी जा रहे हैं, आधा किलोमीटर दूर दिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो लोग भी दौड़ रहे हैं, बाबा जी भी मजबूत है। बाबा जी ने देखा पीछे की फौज आ रही है, अब क्या करे। लेकिन दौड़ने से करने से बाबा जी का वो डाकू का चोर का खाना खाया था ना अन्न, वो पच गया, पसीने से पच करके निकल गया और वापस सद्बुद्धि आ गई। अब बाबा जी सोचे कि कहूंगा कि मैं चोरी करने को आया तब तो रिपेयरिंग हो जाएगी। हा तपस्या टीज पूरी। देखा भाग्य सेवा एक तालाब था, पानी की झील, सुंदर निर्मल जल। दौड़ करके गए पानी की झील के अंदर, डुबकी लगाई और मूर्ति को स्नान कराने लगे। वो आए गए डाकू चोर कि बोला चुप रहो, जल्दी आओ, तुम भी लाभ ले लो, स्नान कराओ। रात को शंकर भगवान मेरे पास आए कि कई बरस हो गए मुझे स्नान नहीं कराया, मेरे को तो पानी की झील में नहाना है। हे भगत, तू ही मुझे समझता है, दूसरे गृहस्थी नहीं समझते, आ तू जल्दी कर, स्नान कराओ। दिन उदय होने से पहले पहले जाकर के भगवान को वापस सिंहासन में बिठाना, चलो बेटा जल्दी आओ। सब कहते हे महाराज बहुत अच्छे हैं, गुरुदेव की जय हो। मूर्ति को स्नान करा करके लेके आके रखा और आरती बोली, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश। बच गया, बुद्धि वापस आ गई। तो व्हाट हैपन, ही टुक द एंड रन अवे द यंग पीपल फ्रॉम द विलेज, दे वर रनिंग बिहाइंड। Dawn came and that Babaji looked behind, they are running some bodybuilders. Now what to do? If I will tell, Babaji is thinking, that I have stolen the statue, then today they will repair my mind. What to do? What to do? Lord help me. But while running, while hard work, sweating, and so many hours already, nearly 18 hours after eating, that the food of the thief was digested and sweated out. Again, normal intellect appeared. What to do? Luckily, there is always luck in bad luck. There was a beautiful lake. So he ran into the lake and began to bathe the Lord Shiva. And people came, thief, thief. He said, stop, silent, don't talk. Lord Shiva came in the night to me and said, so many years I did not bath. The village people prisoned me in the temple. Please, Swamiji, can you help me to bath? So I promised him, before sunrise, we will bring you back to your holy place. So come quickly, wash him. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Harar Gange Mahadev, Harar Gange, Gange Gange Harar, Bhole Shambhu, come on. Oil was giving water, washing the Shiva, running back and brought Bhagavan Shiva statue, fixed there and begins to do aarti.

परसे, प्रेम का प्याला प्रभु कब मेरा। गुरुजी सेड देयर इज अ नेवर एंड फ्रॉम दिस डिवाइन नेक्टर, डिवाइन लाइट, एंड इज सो स्ट्रांग। सो आई सेड गुरुजी कैन आई गिव यू वन सजेशन। गुरुजी सेड यस। आई सेड देन डोंट इमेजिन महाप्रभु जी हियर इन आज्ञा चक्र बिकॉज यू गिव टू मच टेंशन हियर। गो इन द हार्ट एंड हैव हिम इन द हार्ट। ओके, व्हाट गुरुजी सेड। ओके, नेक्स्ट डे व्हेन आई केम, गुरुजी सेड महेश यू कंफ्यूज्ड एवरीथिंग। I said, what? I transported Mahaprabhuji from Agya Chakra to Anaha Chakra. Now, this settlement from transport from Jadan to Khatu is not so easy, you know. You have to make many things. So today, I was nearly confused. I mean, Agya Chakra or Anaha Chakra or Agya Chakras? So, but I asked him, have you the headache? He said, no headache, but confusion. Better I should have a headache than such a feelings. So, but after some time, Guruji said to some people, Mahesh have transferred Mahaprabhuji from Agya Chakra to Anahad, from Agya Loka to Anahad Loka. But he said he have still his sabi. Then what he said, he held the lotus feet of Mahaprabhuji in the heart and his divine light in his Agya Chakra. There is different seva, different things. Then Guruji said when he was doing the Mansik Puja, how from the beginning, early morning when Mahaprabhuji got up and all sevas what Guruji did, he was doing exactly the whole seva, 1 hour. Well, meditation. We need to purify our panchkosha. And this is a anamaya kosha, only what I am telling you. Jaisa khayega ann, vaisa rahega man. Agar koi papi ka ek bhi dana aa gaya, तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसीलिए कहा कि भोजन करने से पहले भगवान को भोग दिया जाता है। मेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण करके क्या लगता है मेरा। हे प्रभु, हमें महाप्रसादी ही दीजिए, ब्रह्मा अर्पणम। हम अर्पण करते हैं, त्याग करते हैं, भगवान का दिया हुआ भगवान को चढ़ाते हैं, फिर बाद में जो होता है हम लेते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसी वृत्ति है या ऐसी कोई ऐसे प्राण उसके अंदर हो, उस अनाज के अंदर, तो वो निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। एक बार गुरुजी ने कहा कि महेश मेरे सिर दर्द हो जाता, अभी पता नहीं ध्यान करता तो 3-4 बार गुरुजी फरमाए बोला। तो मैंने कहा कैसे करते आप ध्यान, तो गुरुजी ने कहा कि यहां बाप महाप्रभु जी की सभी विराज रहे हैं और मैं मेरे महाप्रभु जी के दाहिने पैर के अंगूठे के अंदर जो प्रकाश अमृत निकलता है उसका पान करता हूं और उसी के आधार पर मैंने भजन भी लिखा। महाप्रभु जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि वो इतना आनंद है कि उसका कोई पार ही नहीं है। तो वो कब पूर्ण होगा, वो कब भरेगा? तो बाप जी ने वो भजन लिखा कि प्रेम का प्याला हरि कब मेरा भर से, ये मेरा प्रेम रूपी प्याला जो है प्रभु कब पूर्ण हो जाएगा, कब भर जाएगा? तो मैंने कहा महाप्रभु जी को यहां से अब हृदय चक्र में ध्यान कराओ आप।
दूसरे दिन आया तो बाबू जी कहते मेरे तो है तो गड़बड़ कर दी मैं, क्यों कि महाप्रभु जी का ट्रांसफर कर दिया अनाहत से आज्ञा से अनाहत, और सब मेरी वृत्तियों का ध्यान का वो। मैंने कहा हो तो वापस वैसे ही करें आप। बोला नहीं नहीं अब ट्राई करूंगा इधर भी। तो ध्यान की विधि होती है, महापुरुषों को यह अनुभव होता है, गुरु जी को होता था, और हम लोग जो ध्यान करने को बैठते तो क्या होता है, चलो लोग कहते हैं भगवान की पूजा करनी चाहिए, मंत्र बोलते, काम पे तो जाना है ही है। वो इतना आदमी इतना बेकार है, वो पैसा ले गए वापस देने का सोच ही नहीं रहा है। खैर बच्चों की शादी भी करनी चाहिए। अब ध्यान कर रहे हो कि ये वृत्ति विचार कर रहे हो, इसलिए कहा है कि हमारे महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध, योग के द्वारा हमारी चेतना के अंदर चित्त के अंदर जो वृत्तियां विचार चल रहे हैं इनको निरोग नहीं करेंगे, निरोध नहीं करेंगे, इनको रोकेंगे नहीं जब तक हम हमारे अगले गंतव्य या अगली सीढ़ी पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन वृत्ति का निरोध करने के लिए अतः योगानुशासनम अनुशासन जीवन जीना पड़ेगा, अनुशासन ही सफलता की सीढ़ी है, अनुशासन ही परिवार को मजबूत, समाज को मजबूत, और अनुशासन ही देश को महान बना सकता है। जहां अनुशासन नहीं रहा वहां सब मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए पूज्य श्री गुरुदेव का ये भजन जब मैं गाता हूं तो बाप जी की वो मनोहर सभी सामने आती है, मुस्कान आती है और कहते हैं कि तुमने महाप्रभु जी का ट्रांसपोर्ट कर दिया। मैंने कहा बाप जी ट्रांसपोर्ट नहीं किया। तो डॉक्टर शांति विल सिंह नाउ दिस भजन, प्रेम का प्याला हरि कब मेरा भरसी, दीप नारायण भगवान की। तो टुडे आई स्पोक अबाउट अन्नमया कोशा, टुमारो लेट्स कम टू द प्राणमय कोशा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांच, दिस आर द फाइव डिफरेंट चैम्बर्स, विद इन दिस फाइव इज दैट जीवात्मा एंड आत्मा दैट हैज टू बी प्यूरिफाइड, देन दिस रेडियंस द रेजोनेंस, व्हेन दिस इज प्यूरिफाइड then you are beyond this all material vibrations, from you is only divine radiance is coming, and anyone who comes closer, sits around you, go around the temple, you are in this abhamandal inside. Deep Narayan Bhagwan ki, Deveshwar Mahadev ki, माधव कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की।

0: महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम
1: विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

वानकी देवादिदेव देवेश्वर महादेव की अलकपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान दीप नारायण भगवान सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति।